रहे तो लब में सवार सब हैं प्यादा मिसले हो बार में हूँ तेरे गुलिस्तान में सब गुल हैं बस एक अगर हूँ तो खार में हूँ तेरे गुलिस्तान में सब गुल हैं बस एक अगर हूँ तो खार में हूँ अल्लाह इन योर गार्डन everyone is a beautiful flower. The only thorn is myself. Tere gulistan mein sab gul hain, bas ek agar hoon to khar mein hoon. Mujhe bhi kuch fikr-e-akhirat ho, bohut hi ghaflat-e-shiar mein hoon. مجھے بھی کچھ فکر آخرت ہو بہت ہی غفلت شعار میں ہوں رہا میں بیکار زندگی بھر بس اب تو مشغول کار میں ہوں رہا میں بیکار زندگی بھر بس اب

हैं, बस एक अगर हूं तो खार में हूं। हो माय बिलव्ड अल्लाह, एवरी वन इन योर गार्डन इज अ ब्यूटिफुल रोज विद ब्यूटिफुल फ्रेग्रेंस। द ओनली वन in your garden that is a thorn is none but myself. We should think of ourselves as thorns, and I repeatedly mention this so that we stay away from pride, and at the same time we do an introspection of our lives, that we see how many people we injure and we cause hurt and pain and problem to with our actions and with our deeds. तेरे गुलिस्तान में सब गुल हैं, बस एक अगर हूं तो खार में हूं। मुझे भी कुछ फिक्र आखिरत हो।

दर्दे दिल हो, दर्दे दिल हो, दर्दे दिल, दर्दे दिल मीन्स लव ऑफ अल्लाह ताला. बिकॉज सम पीपल थिंक दर्दे दिल मीन्स आई मस्ट गेट अ हार्ट अटैक. डजंट मीन हार्ट अटैक, मीन मोहब्बत ऑफ अल्लाह ताला.

तुझ पे फिदा हो मेरी जान, लज्जत जिक्र से तेरे राहत दो जहां मिली, लज्जत जिक्र से तेरे राहत दो जहां मिली, जो भी फिदा है दोस्तों खालिक़े कायनात पर, उसकी खिज़ा में भी मुझे खुशबूए बो

या रब करम से अपने तो दोनों जहान दे। जो मुस्तहिक गजब का है उसको अमान।

आपका मर्तबा इस जहां में जैसे खुर्शीद हो आसमां में। दोस्तों ये है शहरे मदीना जिससे इस्लाम फैला जहां में।

है, आशिकों का मीना और जाम है, अल्लाह जल्ला जलालुहू। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।